श्री दीपनारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, सतगुरुदेव की जय।

0: ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् बुद्धिमतः सुरसुपेन आवासबुद्ध्यौम अस्तिकविष्टाः सतशोनिव सतशपिवः ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो गुरुभद्वा श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः प्रार्थना ध्यानार्थे प्रार्थना कृतस्तारं समर्पयामि अग्रे भैरवदेवतानां नवग्रहदेवतानां ध्यानम् ॐ ब्रह्मा मुरा त्रिपुरान्धकारी भानुश्री भूमि सुतो उपदिष्टा गुरुश्च शुक्रासिनाव केतुभा सर्वे ग्रहा शान्तिग्रा भवन्तु ॐ भूर्भुवः नवग्रहमण्डल अधिष्ठातु देवताभ्युन्मा प्रार्थना सारां समर्पयामि देवराज सेव्यमान पाप नागरी पंकजं व्यानयत्न सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगि वृन्द वन्दितं शिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे अवन्तिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे ओम भूर्भुवः श्री काल भैरव देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि शिवपञ्चायतन ध्यानम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा गणपतिं ध्यायेत् हरि ओम माम गणानन्द्वा गणपति गुं हवामय प्रियानन्द्वा प्रियपति गुं हवामय नदीनान्द्वा नदीपति गुं हवामय सोम अहम जानकृत मातम दास कृतम ओम गणपति ध्यायामि अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कृष्णा दुर्गाङ्गाम्बिलवासिनीं ओम अम्बिकाय नमः ध्यायामि ओम जतक्रन्दा प्रथमं जायमानो दियं समुद्रादितो बाबुरिगात शयनस्य वक्षारुणस्य बाहुपस्थितिं महिषादन्ते गर्भन्न ओम कार्तिक मुख देवताभ्यो नमः ध्यायामि ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जय केज पृथ्वी मनो जय अंतरिक्षे जय दिव्यतेभ्य सर्पेभ्यो नमः ओम सर्पाय नमः ध्यायामि ओम स्नेकाय नमः ओम आसुजानो मृगभुवनवी मोघनागनाक्ष वनचरि गणिनाम संग्रंदनोन्मिकै कविरा शतगुणसेनादयत्सागमिन्द्रः ओम पूर्वस्व नन्दीश्वराय नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे ओम स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः ओम नमः शंभवायुगवाय नमः शंकराय चमत्कराय नमः शिवाय शिवधराय ओम पूर्वस्व स्फटिक महेश्वर शिव पंचायत देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पूरे शिव परिवार का ध्यान जी चार बार समझे जल चढ़ाना है ओम पादयो पाद्यम समर्पयामि हस्तयोर्घ्यम समर्पयामि मुखे आजमनीयम समर्पयामि सर्वांगे दिलस्नानम समर्पयामि अग्रे पयस्नान स्वामी जी वैसे कभी ये सर्प का ध्यान करते हैं तब ऐसा कह सकते ना जैसे अपन संस्कृत में बोलते हैं ओम सर्पाय नमः या नागराजाय नमः तो इंग्लिश में ओम स्नेकाय नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे ओम पयस्नान हरि ओम ओम पय पृथ्वीयां पयो गतिपयो दिव्यंतरिक्षे पयुदा पयस्वती प्रदिशः सन्तुमशिकं न ओम पयसस्तु समद्भूत मधुरां लंसशिप्रभं दध्यानितं मया देवस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम पूर्वस्वः स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्तेन शुद्धो दघस्नानं समर्पयामि शुद्धान् आजमनीयं जलं समर्पयामि अग्रे दधिस्नानं ओम नदीग्रावणो कारिकन्दिष्णो रसभस्किभाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणायो गुहिता रिगत ओम पूर्वस्वः दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानान्तेन पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धान् आजमनीयं जलं समर्पयामि अग्रे घृतस्नानं ओं घृतं घृतवावानः पिबतपसंपदावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरस्तुभाः दिशः प्रदिशः दिशो विदिश उद्दिशो दिव्यः स्वाहा ओं पूर्वस्वः स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अग्रे मधुस्नानं ओं मधुपादारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्दभोगदेहि मधुनक्त मुदोगसो मधुमत्पार्थि भग्गुरजः मधुयोरस्तुनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर् मधुमावस्तु सूर्या ओं पूर्वस्वः स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्तेन शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अग्रे शर्करा स्नानं ओम अपाग्गुर समुद्वाय सग्गो सूर्जे सन्तग्गो समाहितम् अपाग्गुरस्य जोरसस्तम्भो गृह्णामितमुभयामगृहीतो सेन्द्रायत्वा जुट्टं गृह्णां मेघतेजो निरिन्द्रायत्वा जुट्टतम् ओम पूर्वस्वः शर्करा स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि अग्रे गन्धोदक पञ्चामृत स्नानं ओम पञ्चानदिया सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती पञ्चदासो देशे भवसरित ओम पूर्वस्व स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि पञ्चामृत स्नानान्तेन शुद्धो दक स्नानं समर्पयामि शुद्धान् आजमनीयं जलं समर्पयामि अग्रे गन्धोदक स्नानं ओम गन्धर्वस्वाभिष्वावतो परिदधातु विश्वस्या दृष्टिये यजमानस्य परिदेरसग्निरिडयीडितः ओम पूर्वस्व द्वादश ओम पूर्वस्व स्फटिक महेश्वर देवताभ्यो नमः गन्धोदक स्नानं समर्पयामि गन्धोदक स्नानान्तेन पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धाम् आजमनीयं जलं समर्पयामि अग्रे भस्मोदक स्नानं ओम त्रियायुगं जमदगणे कशिकवसिद्रायुगं मा जद्देवेगत्रियायुगं तन्नोस्त्रियायुगं मा ओम प्रसदी भस्मजान प्रसदी भस्मजानो ज्योनिमुपश्य पृथिवी मग्ने सद्गुजरति मात्र विश्वं ज्योतिकमान पुनरा सदा ओं पूर्वास्व भस्मोदक स्नान संवयामि भस्मोदक स्नानां तेन पुनः शुद्धोदक स्नान संवयामि शुद्धान आज्वनीयं जलं समर्पयामि अग्रे पुष्पोदक स्नानम् ओम ओघदी पूर्वा जाता देवी व्यस्त्री युगम पूर्वापनै नो भ्रूणा महगो शतं धामानि सप्त च ओं पूर्वास्व स्फुटिक महेश्वर देवताभ्योन्मा पुष्पोदक स्नान संवयामि पुष्पोदक स्नानां तेन पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्प हस्त प्रक्षालनम् परतः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि बिल्वदल पत्राणि समर्पयामि ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च परुतिने च नमः श्रुता कृते नाद दुन्दुभ्या च अनन्या अनन्याय च ओम सर्वदाभ्यो नमः बिल्वदल पत्राणि समर्पयामि ग्रहणं कृत्वा समझे पुष्प सूंघ करके पीछे छोड़ना फिर से नया पुष्प चढ़ाना ग्रहणं समर्पयामि हस्त प्रक्षालनम अभिषेकार्थे पुनः नवीन गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि न्यासं कृत्वा ओम मनोजूद्र जुगदा मासिक प्रियस्पत्र चैतन्य मंदानो द्वरिष्ठं जति गुणदा पुष्पे देवास मानन्दा मो प्रतिष्ठ प्रतियाय नमः अबोधिगणि समिदा जनानां प्रतिदिनं विवादि मुखा सम्मा जब्बा प्रपंचिकानां प्रपान मात्रदां चतुर्थे स्वाहा ओम मूर्धानंदि व्रति मृत्युया भैष्वा नरमृदा जागुन्मा कवि गोंसमराज नमः वंदे देव महापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नग भूषणम रुद्रम वंदे पशुनामतिम वंदे सुवृज सांगवर्ण नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम जवरदम वंदे शिवम शंकरम ओम भूर्भुवस्वः स्फुटिक महेश्वर देवताभ्योर्नमः सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि धारापात्र पूजनम ओम जद्रधारानपेदा लक्ष्मी वाहा स्तियवसु क्रणतु ब्राह्मण गुराजन पारयामसि ओम पूर्वस्व धारा करणम प्रार्थना नमस्कारान समर्पयामि ओम प्रणम श्री शादी ओम गौरी भद्रम विनायकम भक्ताभासम नित्यम आयुष्का मार्द सिद्धे प्रथम वक्त नंदन च एक दंतं द्वितीयम तृतीयम रश्मिंगाक्षम गजकुत्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम राजेन्द्रम धूम्रवर्णदाशनम नमो बालचंद्रम च दशमंत विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशं दुजानं द्वादशैः नामानि त्रिदंतय्य पटेन्द्र नचदिग्नवयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी पदे विद्यान्तनार्थी लभतेन्द्रं पुत्रार्थी पदे पुत्रान् मोक्षार्थी तोद्येकदं जपेत् कृणुति स्तोत्रं षड्विरार्थं संवत्सरं सिद्धिं च लभते तान्त्र तुमसय अष्टभि ब्राह्मणे वैशालकेतवाय समर्पये दत्त विद्यापते सर्वा गणेशस्य प्रसादित हरि ओम ओम गणानंद गणपति गुह हवा मई प्रियानंद प्रियपति गुह हवा मई दीनांद बांद गुह हवा मई सोम अहम जान गुदा तुम जात गुदम गायते दृष्टि जगत रंच पंक्ति आसा प्रिय दृष्टि को सो जी भी समय दुब द्विपदा जाज गुदा त्रिपदा जाज गुदा हवि संदा जाज संदा आसा जाज संदा हा सुजी भी समय दुब सहस्तो महा सा चंद सा वृदा सा परमार गया तुत देव्या प्रभे काम बंदा मृत दीरान वाले वीरेरतियो नरस्मिन् अजज्जागत दूरम मोदते देवंता दुसप्त सिद्धवै दी दूरंगम ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मेना शिव संकुलमस्तु
1: अद्भ्य समृद्धा पृथ्वी पृथ्वी सर्वा ग्रहणा समृद्धा कृत्स्कृत विचा
0: बीत तुम्हें दिन मरते चले हुए तुम आ जाओ क्या करे सोने। तमें भी इस बात मृत्यु में दिनान कुछ कह रहे थे समझिया। तमें भी इस बात तमें भी विद्वाद मृत्यु में दिना न्याय बंधा पति के देना या ओम प्रजापति प्रजापति चरु भी अंदर जाए मानो बहुधा भी जाए देतस के जोनिम परिपश्यन दिदी रान हतस्त प्रभुनान विश्वा जो देवे व्यात जो देवा नाम ब्रोहिता प्रभु जो देवे व्यो जादो नमूर जाए ब्राह्म हिरुजं ब्राह्मण जनेन्दो देवाकृत ब्रुवन्ना तस्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस देवासन बसे श्रीषते लक्ष्मी शपत्या वो रात्रि पार्थ नक्षत्राणी रोशनो जब तम मानने का नाम मैं गाना दर्भ लोक मैं गाना हरि ओम मा सुजानो मृगभुवन भी मोगना सहमानुग्रा दक्षिणा इंद्रस्य वृणो वरुणस्य राज्ञाद्यानां मरुता कुचरुत ब्रह्मा महामनसं शिवानाङ्गो गोदेवानां चेतां तस्तात् उद्धरकय मघवन्ना न्युसत्पनां मा मघानां मनाकुसि उद्भद्रान् बाजिनां बानदाना जयतानन्दुगोगास्माकमिन्द्रः तन्मृतिकस्माकञ्जाय कौस्ताजयन्तोऽस्माकं वीरा उत्तरे वन्तुस्माहो देवावदावे कौमिकाञ्चित्तं प्रतिरूपयन्ति घ्राणाङ्गे अंगु विभ्राट ब्रेगत विपद सोम्य मधुवायु तिमता वफिर तुम्मा बात जूतो जो अभिर के मर तिक्मना प्रजा वफिर को पूरा भूपो को पूरा विराज दियो जिन जात वेद सं देवम बंदी को त्रिश विश्वास दूर जम्मा जेना वक्ष मनुन्य तन्य नागवानु तम ब्रुन विश्व सही दैव्य आपत ब्रजु आगत तो गूरत हेन सूर जत विजा मधुवाय जितनी कुछ मन जाते तम प्रतना यंबे चरण दीवान अम्मा तम प्रतना पूर्वता विश्व देवता शिक्षता दिम दरे ही कथा कुसुर दम्मा प्रतिजन मन दंदो असिनमा सुन्य मन यासु प्रतिसा यंबे नशो दैत वृष्ण कृपा ज्योतिर जरा यूरज दो विमाने इम बाकु संगमे सूर्यस्य सुजनं ब्रह्मदि बिरियन्ति जनं देवानं मुदगादने धनि कंदक्षम लुत्यागने हे आप्राद्या पृथ्वी अंतरिक्ष को सूर्यात्मा जागतस्त सुखश आनाइडा प्रविद विश्वानरा सविदा देवै तो बियदा जुवानो सदान विश्वं जागद विद्यमनिका जदति जदति कच प्रतिमदगा सूर्यजा सर्वं तदिंद्र देवसे तारण विश्वद्रस ज्योति के सुदर्जा विश्वमावास रोजनम मात सूर्य देव तंदन मई तो मध्याकृत और विद्युत कुसंजबार जादे देव तारी दहा सदस तास द्रास दात्री बात तरु देव स्थिमस मई दान में दृश्य वरुण सिया भी जिक्षे सूर्य जो रूपं करणु देद्यो रूपस्ते अनंत मन्य दृजा कृष्ण मन्य दरिदा समरंदी वनमावती दुर्ज बड़ादि महावती महस्त तुम्हें बन सदिदा देव महावती प्रदुर महावती द्रा देव महावती मन्ना देव नाम दुर्जा पुरोहितो विद्यो दियराभ्यं महाश्राय दुर्ज विश्वे इंद्र देव पक्षदा वसु ने जाति जन मानव उसा प्रतिभागत दीति मा अदिया देव अदिया अदिया देव अदिया दुर्ज के अंदर को हंसा विप्रदान रविया दा तन्नो मित्रो प्रणो माम दम पदिता सिंधु प्रति वदियो आ कृष्णेन सा वर्तमानो निवेशन मृत्यं मृत्यं जाहिरण्यन दातेना देवो जाति पुनानि विशन्नानि हि ओम्मा नीलग्रीवो उदय नंगो पात्र श्रन नद्र सन उदाहर दास जुर मड़ यादि नान मोस्तु नील ग्रीवा सदा राक्षा मेटुके अधो जीवन वंदे भ्यो ग्रन मा ब्रह्मं जदन द्वार सु विराट नुर जम जाश देश तक अपराध अब गो बा विजय नन वर्धन मिशल्यो बाण मा उदा ने सन से आके बाबुर सन गति जाते हेतर मेट नमस्ते बोधे तन उदय आत्मान विश्व सुन परि पूजा परि देन मनो हेतर स्मार प्रणक पुष्पदा दो जी दुस्वारे सुनि देतम ना अवधि के नुगो दास राक्षा ने मान मोशवाना सुमना भवन सायुदायाना ओम नमो हिरण्य भावे सेना ने दुचान बदे मोन मोर के प्योर के शब्द नाम दे मोन मोशक पिंजरा यद्व की मदर मोन मोर के शब्द नाम चान मदे मोन मुझे जाए बेने नाम दे मोन

0: आपकी आवाज नहीं आ रही, वी कांट हियर हिम। सूर्य भगवान की जय।
1: रुको,
0: आवाज नहीं आ रही। बोलिए कुछ वो पंडित जी।
2: भोग के लिए पूछ रहा था कि भोग हो तो भोग लगा लेते हैं।
0: हाँ भोग लो पहले।
2: कुछ फ्रूट हो तो चढ़ा कर रखे फिर। ओम ज्वाला मालिने नमः। हरिम रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात सुक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्रादवा यश्च प्राण समुगात अग्निर्जायत या देवि सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। ओम हरिम रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वाला मालिने नमः। शिवजी की आरती बोले समझ। ओम जय शिव शंकर
0: स्वामी परिपूर्ण।

की जय। हिंदू धर्म सम्राट स्वामी श्री माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर ब्रह्म स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुदेव की जय। अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री अवतारपुरी जी महाराज की जय। मात पिता सद्गुरुदेव की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। ओम यानि कानि च पापानि जन्मानृतानि च दानसर्वाणि यस्सन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यत्पूजित मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे आवाहनं न जानामि न जानामि तुवार्जुनं पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मृत्युंजय महादेव त्राय मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं गर्भमंदनैः हस्ते जलमादाय। ओम अतिपूर्वोच्चारिते मंगला गुण गण विशेष निष्ठायां शुभ पुण्य तिथौ अच्युत गोत्रोत्पन्नस्य परम पूज्य स्वामी वर्यः सर्वेषां भक्तजनानां समुपार्श्वे अद्य श्रावण महोत्सवे अंतर्गते ब्रह्म मुहूर्ते शुभवेलायां स्फटिक महेश्वर शिव पंचायतन देवताभ्यो सूक्ष्म अभिषेकम् अहम् प्रीयतां नमः। तत्सत् श्री शांब शिवार्पणमस्तु। विष्णु

स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीन्महीषागौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः शान्तिः। हरि ओम्। हैव अ ब्यूटिफुल लवली डे एंड सी यू एट 10:30। सत्संग इज़ एट 10:30। 10:30।

दीप ताली भगवान की जय। श्री विश्व कंदेश्वर परम स्वामी अश्विन गुरुदेव की जय। जुग जुग जीवो महेश्वर नंद जी।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देवपुरी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।

ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सदगुरु स्वामी महाद्वानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरि ओम।

अमृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुकांदिं पुष्टिवादनं उर्वारुकाम्य बंधनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुकांदिं पुष्टिवादनं उर्वारुकाम्य बंधनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुकांदिं पुष्टिवादनं उर्वारुकाम्य बंधनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात्।

ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमुहूर्तं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मौक्तमूलम् ॐ शान्ति परब्रह्म।

0: ಭಕ್ತಂ ನಿತ್ಯದಾಯಂತೆ ಯೋನ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. अनंत ब्राह्मण्ड की रचयिता सृष्टि की पालन करता घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन. आराध्य श्री गुरुदेव के शुभ चरण कमलों में कौटि कौटि साष्टांग दंडवत. धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है कि हम यहां इस आश्रम के अंदर सत्संग में आए. ये हमारे पूर्व जन्म का अच्छा कार्य अच्छा कर्म यहां लेके आया है. ब्लेसेड सेल्फ ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड. The blessing is coming to you from Holy Bharat, beautiful, colorful Rajasthan, pink city, Jaipur ke Jodhpur?
1: Jaipur.
0: Welcome. Today's subject is the Nad Yoga. Vedas say Nad Rupa Parabrahma. Veda mein kaha gaya hai ki Nad Rupa Parabrahma. Agar Parabrahma Pramatma ko dekhna hai ki wo kaise hai, to unka aur koi shavroop nahi hai, keval Nad. The vibration, the resonance, Anant Brahmanda, Sastra Suryas, thousands and thousands of sun systems, endless stars and moons, all is created out of the one,
2: Deveshwar Mahadeva ki jai, Satguru Deva ki jai.

0: स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महेन्महेषा गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सद्गुरुदेव भगवान् की जय ॐ शलपुर्जि महादेव की जय देवादिदेवेश्वर महादेव की जय सुदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरजि सद्गुरुदेव भगवान की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरजि गुरुदेव
1: ओम जय।

ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् हरि ॐ तत्सत् जपा कर यही महामंत्र हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव।

सद्गुरु स्वामी महात्मानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरिओम।